0: बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर, एफएम रेनबो पर।
1: তাহলে শুরু করি ইনভেস্টিং এর পাঠ।

0: সেবির এক ইনভেস্টর সচেতনতামূলক উদ্যোগ। আরো জানতে হলে সেবির ইনভেস্টর ওয়েবসাইট দেখুন, নয়তো সেবি সার্থী অ্যাপ ডাউনলোড করুন।
1: Good morning India, good morning Kolkata, good morning uncle auntie, good morning bhai aur behno, and special good morning to Gen Z. Yaar utho utho, uth jao, ab to alarm ko aur snooze mat karo, kyunki navratri jo hai wo 9th speed aur Durga Puja 5th gear lagne wala hai. Ji haan, पंडाल में बांस बंद गए हैं, ढाके की आवाज दूर से आ रही है, और ये क्या, तुम अभी भी आंखें रगड़ रहे हो जेन ज़ी? कम ऑन, चाय गरम है, लूची आलू दम का सपना देखो और सोचो कि बस कुछ दिन और फिर पूरा शहर बोलेगा बोलो दुर्गा माई की। हालांकि हम बोलेंगे जय माँ शेरों वाली।

शुरू की घड़ी में 10:10 और दोस्तों आपको बता दें कि आप सुन रहे हैं AIRFM रेनबो पर कार्यक्रम का नाम नॉनस्टॉप गपशप। और इस कार्यक्रम में हम बहुत सी बातें करते हैं, बहुत सी बातें आपसे सुनते हैं, तो ये सिलसिला चलता रहेगा 11 बजे तक। वैसे एक बात आपको बताना है कि कोलकाता और अर्जेंटीना के बीच एक बहुत बड़ा गहरा संबंध सदियों से है। जी हाँ, कोलकाता में दो धर्म है कहा जाता है, एक मोहन बागान ईस्ट बंगाल और दूसरा अर्जेंटीना ब्राजील। और अगर आपने कोलकाता में वर्ल्ड कप नहीं देखा तो आपने शायद कुछ बहुत बड़ा अपने जिंदगी से मिस किया। इतिहास बताता है, जी हाँ, कोलकाता में अर्जेंटीना का जो प्यार है वो माराडोना से शुरू हुआ। 1986 में जब मैराडोना ने इंग्लैंड के खिलाफ हैंड ऑफ गॉड और गोल ऑफ द सेंचुरी मारा, तब कोलकाता के हर पाड़ा में, हर मोहल्ला में एक ही नाम गूंजा, वो नाम था मैराडोना का। क्यों? क्योंकि कोलकाता खुद को अर्जेंटीना जैसा समझता है, गरीब, जुनूनी, फुटबॉल के लिए पागल, दीवानगी और ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह। जी हाँ, एक सिमिलरिटी हमेशा इन दो देशों में था। और जब मैराडोना गरीब बस्ती से उठकर आया तो जैसे मानो कोलकाता से कहीं वो जुड़ चुका। वही प्यार एक बार फिर से 2006 में दिखा। 2006 में जब मेसी आया तो मैराडोना के बेटे जैसा लगा। हर गली में मेसी की जर्सी, कुमार टोली में दुर्गा पूजा से पहले मेसी की मूर्ति बनती थी। और 2022 वर्ल्ड कप फाइनल के दिन धर्मतल्ला में तो सुबह 3 बजे 50,000 लोग बड़ा स्क्रीन पर मैच देख रहे थे। आज मेसी का नाम हम क्यों ले रहे हैं उसके बारे में आपको जरूर बताएंगे, लेकिन चलिए धीरे धीरे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए गीतों का सिलसिला शुरू करते हैं, जारी कर रखते हैं। और हाँ, आप भी हमसे जरूर जुड़े और हमें बताएं आप क्या सोचते हैं इस देश के बारे में, इस खेल के बारे में। और बातें तो होंगी, फिलहाल अगला गीत आइए सुनते हैं, बेहद खूबसूरत रोमांटिक गीत, एंड आई होप यू विल एंजॉय।

0: हल्के हल्के बोलिए, जोश से बोलिए, लेकिन लगता है कोई बोलने के लिए तैयार है हमारे साथ। हेलो
1: हेलो
0: हेलो
1: नमस्कार दीदी।
0: नमस्कार,
1: मैं शोभिक सरकार बोल रहा हूँ कस्बा से।
0: स्वागत है।
1: थैंक यू दीदी, पहले तो आपको मेनी मेनी थैंक्स जो आपने मैराडोना एवं मेसी के बारे में बात कर रहे थे। हम लोग का एक इमोशन है, जब मैराडोना जब आया था मैं बहुत छोटा था, उतने में समझ नहीं था उस टाइम में, किंतु मेसी के बारे में बोलूंगा उसमें बहुत इमोशन है, क्योंकि हम लोग कोलकाता में फुटबॉल का एक बहुत बड़ा एक क्रेज है। आपने जब बोला था धर्मतला में वो रात में वो जायंट्स देख रहे थे विश्व कप, देखिए जब वो मेसी के बारे में जब बोलूंगा तो थोड़ा ही बोलना चाहिए उसको, जो लग रहा है। देखिए दीदी, आज जो मेसी जो लास्ट जो खेला था, जो मैच जो खेला था, सुबह सुबह मैं देख रहा था वो मैच, जब जब देख रहा था तब तब मैं इमोशन हो जा रहा था, क्योंकि वो इसका लास्ट मैच है। मैं देखा था वो एक गोल किया था, पेनाल्टी गोल, बहुत अच्छा लगा था। एवं जब कोलकाता में जब मेसी आया था उसको देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। हाँ देखिए दीदी, मैं बोलूंगा अर्जेंटीना एक तो अलग एक देश है, मुझको लग रहा है जब भी हमने यहाँ पर है ना, एक अलग ही एक अर्जेंटीना हम लोग का बहुत बहुत बहुत फैन है यहाँ पर। देखिए जब भी ये मेसी आया था, जब भी ये जो अर्जेंटीना का जो गोल कीपर जो आया था दो तीन साल पहले, बहुत क्रेज हुआ था उस टाइम में जब
0: हाँ।

यही बोल रहे हैं कि ये क्रेज जो ये क्रेज की ही बातें हो रही हैं और मुझे लग रहा है आप बहुत भावुक हो गए हैं मेसी को लेके। सिर्फ आप ही क्यों, बहुत लोग आज भावुक हैं क्योंकि कल 6 तारीख को उन्होंने अपना आखिरी मैच खेला और इसी के बारे में आज हम बातें भी करेंगे। आप जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको बताना चाहेंगे कि ब्यूनस एयर्स के मोन्यूमेंटल स्टेडियम में 85,000 फैंस के सामने अर्जेंटीना ने 3-0 बेनिन को हराया और मेसी ने 1 गोल प्लस 2 असिस्ट किए अपने आखिरी मैच में। ओटमेंडी और निको पास को असिस्ट दिया। और हाँ, जैसा कि अभी अभी हमारे दोस्त ने बताया कि एक पेनल्टी से गोल मारा 71वें मिनट में और ये उनका 208वां मैच था और साथ ही 126वां गोल। अर्जेंटीना के लिए ये दोनों एक रिकॉर्ड है, तो मुझे लगा कि आज मेसी के बारे में बातें तो होनी चाहिए। मतलब ये कह सकते हैं कि चारों तरफ एक क्रेज बना हुआ है, मेसी मेसी मेसी, क्योंकि आज के बाद हमारे ये हीरो जिसे कुछ लोग देवता मांगते हैं, फुटबॉल का देवता, वो हमसे विदा लेने को हैं। उन्होंने फुटबॉल की दुनिया से, हाँ ये कहा है कि वो शायद खेलेंगे लेकिन उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है अभी वो हमें ज़रूर दिखेंगे, लेकिन वो जो नीला और सफ़ेद रंग का जो क्रेज़ है, आपको मालूम है कि ये जो क्रेज़ कोलकाता में है वाइट एंड ब्लू का, ये अपने आप में एक इतिहास है। तो ये मेसी अब वाइट एंड ब्लू में भले ना दिखेंगे लेकिन ये दुख है अर्जेंटीना को और उसके साथ साथ कोलकाता को। खैर, ये बातें चलती रहेंगी, बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए। अगला गीत हम सुनाने जा रहे हैं अरिजीत सिंह की आवाज में एंड इट्स अ ब्यूटीफुल लवली ट्रैक। सुनते रहिए, साथ रहिए। आप सुन रहे हैं 107 FM रेनबो पर, कार्यक्रम का नाम है नॉन स्टॉप गपशप एंड यस पॉपी है आपके साथ ओनली ऑन 107।

ये प्यार पहली बार नहीं, ये प्यार सालों का प्यार है, ये प्यार दशकों का प्यार है, ये प्यार जेनरेशंस का प्यार है। हर मोहल्ले में, कोलकाता के हर मोहल्ले में अर्जेंटीना फैन क्लब आपको जरूर दिखेगा। फिर वो चाहे बिलेघाटा हो या टाला, श्याम बाजार हो या बिहाला, दीवारों पर नीला सफेद रंग हमेशा दिखता आया है। चाय की दुकान पर तो मेसी ग्रेट है या पेले, इसकी बहस सुबह 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक चलती है। कितने लड़कों ने, लड़कियों ने, युवाओं ने अपने हाथ में मेसी का टैटू बनवाया है। वर्ल्ड कप के समय पूरे शहर में अर्जेंटीना का झंडा लहरा रहा था। मतलब वो कहते हैं ना, उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो यही नेशनल फ्लैग बन गया हो। और मतलब ये जो जुनून है, ये जुनून भरे, भाषा में कोई एकता नहीं है, मतलब हम उनकी भाषा नहीं समझते हैं क्योंकि काफ़ी लोग वहाँ स्पैनिश बोलते हैं, लेकिन हाँ, वैमोस अर्जेंटीना, ये ज़रूर सभी चिल्लाते हैं जब जीत की बात होती है। और सच अगर मैं बताऊं, अगर ये दिल की बात है, हर दिल की बात है कि कोलकाता के लिए अर्जेंटीना एक आईना है। हम भी संघर्ष करते हैं, हम भी कला पसंद करते हैं, हम भी हार के बाद गाते हैं, और जब अर्जेंटीना हारता है तो कोलकाता, मानो कोलकाता में सैलाब आ जाता है। जी हाँ, और अगर कहीं बात जीत की होती है तो हर क्लब में मिष्टी दोई एकदम फ्री।

0: टॉयलेट एक प्रेम कथा से आपने सुना ये खूबसूरत गीत, एक रोमांटिक गीत। वैसे आपको बता दूं, काफी कंफ्यूजन है कल के मैच को लेकर। कल का मैच भले ही आज कोलकाता में सुबह देखा गया, क्योंकि अर्जेंटीना में जो वक्त मैच खेला गया वहां पर 6 तारीख माना जाता है इसको, और इसीलिए ग्लोबली इसे इस मैच को 6 तारीख का डेट दिया गया। हालांकि कोलकाता में ये 7 तारीख को दिखा है भोर के टाइम में। इसको लेके जो कंफ्यूजन है वो मैंने मिटाने की कोशिश की। फिलहाल देखते हैं कोई हमसे जुड़ चुके हैं, कौन है और वो क्या कहना चाहेंगे। हेलो
1: हेलो, सुप्रभात।
0: सुप्रभात
1: पापी जी नमस्ते, शुभजीत बोल रहा हूँ बेलघोरिया से।
0: जी स्वागत है आपका।
1: आज का टॉपिक तो बनना ही चाहिए मेसी, क्योंकि आज का जो 126वां गोल है उन्होंने प्रूव कर दिया कि वो क्या है और क्या कर सकते हैं। और अर्जेंटीना का नाम हमेशा पहले से ही, मारादोना के टाइम से ही कोलकाता में, स्पेशली कोलकाता में जितना क्रेज है ये इसका, मुझे लगता है कि फुटबॉल हमारे लिए एक इमोशन है, एक गम जैसा है। और अगर मेसी की बात करें तो मुझे लगता है कि उनकी कहानी हर इंसान को प्रेरित करती है, क्योंकि मेसी बहुत कम उम्र से शारीरिक विकास से जूझ रहे थे, उसके बावजूद भी उन्होंने फुटबॉल को नहीं छोड़ा। तो उनका फुटबॉल का जो प्यार था, आज उसी की वजह से ही वो लियोनेल मेसी है।
0: क्योंकि
1: हम लोग मारादोना के टाइम में भी देखे थे कि मारादोना का जो टैक्टिक्स है, प्लेइंग टैक्टिक्स, उनका ड्रिबलिंग और गेंद पर नियंत्रण, पासिंग और गोल करने की जो क्षमता, ऐसा लगता था कि मानो की गेंद ही उनके पैर में चिपक गई है। तो यही चीज मुझे लगता है मेसी और मारादोना में बहुत सारा सिमिलैरिटीज है। हम लोग रिफ्लेक्शन पाते हैं मारादोना का है।
0: राइट, और दोनों एक ही देश से हैं।
1: जी, और जर्सी नंबर भी सेम। तो और मुझे मेसी में एक चीज बहुत अच्छा लगता है कि उनका जो स्टार्डम है,

0: वो मुझे काफी हटके लगता है. उनमें जो विनम्रता है, जो डाउन टू अर्थ जो नेचर है, वो बहुत ही खास है. और कोलकाता में ऐसा लगता है कि अर्जेंटीना के अंदर ही कोलकाता है, या कोलकाता के अंदर ही अर्जेंटीना है.
1: बिल्कुल बिल्कुल.
0: क्योंकि आप वर्ल्ड कप के टाइम में भी देखिएगा, जब रस्ते में फ्लैग क्या दिखने को मिलता है, अर्जेंटीना और ब्राजील. और ये जो राइवलरी है, ये भी झलकता है, ऐसा लगता है कि ईस्ट बंगाल मोहन बगान के साथ मैच हो रहा है, ये लोकल मैच हो रहा है.
1: जी बिल्कुल बिल्कुल. चलिए, बहुत अच्छा लगा आपका, आपने अपना व्यूज दिया, थैंक यू सो मच. और जैसा कि इन्होंने कहा कि मेसी एक खुदा है और एक इबादत, लोग उसे इबादत करते हैं, मानते हैं कि वो भगवान है. वैसे हमारे कोलकाता में कालीघाट में माँ काली है, दक्षिणेश्वर में रामकृष्ण है, और हर गली हर मैदान में हर चाय की दुकान में लियोनेल मेसी है. कोलकाता के लड़कों ने मेसी में वही देखा, वही इबादत आज जो उसे पूजा जाता है. वो क्यों? कि वो इसीलिए क्योंकि 5'7" का ये लड़का, जिसे बचपन में कह दिया गया था कि तुम कभी बड़े नहीं हो पाओगे, तुम्हें हार्मोन की बीमारी है, जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि वो बीमारी से जूझ रहे थे, वही लड़का जो हार्मोन की बीमारी से जूझ रहा था बचपन में, वो लड़का पूरी दुनिया को अपने पैरों पर किस तरह से झुका देता है. तो ये अगर कोई इसे पूछता है, कोई इन्हें अगर इबादत करता है, तो वो कम क्या है. जब वो दौड़ता है तो लगता है जैसे गेंद उसके पैर से चिपकी हुई है, कोई मंत्र हो, जैसे उस मंत्र के द्वारा उसने उस बॉल को अपने पांव से एकदम चपका के रखा हुआ है. कोलकाता के मैदान में जहाँ कीचड़ में फुटबॉल खेला जाता है, हर बच्चा, हर वो शख्स वही मंत्र दोहराने की कोशिश करता है. हमने उसे गिरते देखा 2014 में वर्ल्ड कप फाइनल हारते देखा, घुटनों के बल रोते देखा, और फिर उठते देखा. 2022 में वही लड़का 35 साल की उम्र में अपने कंधों पर पूरे देश को लेकर विश्व कप उठाता है. ये खुदा का चमत्कार ही तो है. इबादत का मतलब सिर्फ मंदिर जाना नहीं होता. इबादत तो वो है जो तुम रोज करते हो बिना किसी को बताए, और ऐसी ही इबादत है कोलकाता में मेसी के लिए.

0: बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर, एफएम रेनबो पर।
1: नॉनस्टॉप गपशप ये प्रोग्राम चलता रहेगा 11 बजे तक। और आपको बताएं कि आज हम बातें कर रहे हैं मेसी के ऊपर और एक खास प्लेयर के ऊपर अब बातें होंगी, लेकिन चलिए एक और खूबसूरत गीत जुबीन नौटियाल और पलक मुछल की आवाज़ में। इस गीत के बाद एक और प्लेयर की बात हम करेंगे, लेकिन वो कौन है वो बताएंगे इस गीत के बाद, यानी कि आप सुनेंगे। और एक बार फिर से बता दूं, मुझे मालूम है जब लोग जानते हैं हमारे इस प्रोग्राम का नाम, लेकिन साथ ही मेरा बता दूं, मैं हूं पॉपी आपके साथ ओनली ऑन 107.7 FM रेनबो पर।

46 past 10 यानी कि 46 मिनट 10 बज चुके हैं और बताऊं आपको कि अब बात करते हैं उस लड़की की जो मोगा पंजाब से है। जी हाँ, एक छोटे से शहर में जहां लड़कियों को कहा जाता था चूल्हा संभालो, और हाँ एक लड़की सलवार कमीज में दुपट्टा कमर में बांध के लड़कों के साथ क्रिकेट खेलने लगती है। उसके पिता हरमंदर सिंह भुल्लर एक क्लर्क थे पर खुद वॉलीबॉल बास्केटबॉल प्लेयर। उनके बाल को काट के छोटा कर दिया जस्ट बिकॉज इस खेल की वजह से। और फिर क्या था, फिर वो छोटे से गांव से उस छोटे से लड़की ने जो कर दिखाया वो सामने है। जी हाँ, वो सामने है। हम बात कर रहे हैं हरमनप्रीत कौर की, जो क्रिकेटर नहीं एक तूफान है, जो मोगा पंजाब की गलियों से निकली और पूरे दुनिया को हिला कर रख दिया अपने परफॉर्मेंस के जरिए। तो आज उनके बारे में इसलिए बात कर रहे हैं कि उन्होंने भी कल अलविदा कह दिया है। और ये बात कुछ लोग कन्फ्यूजन में हैं कि उन्होंने खेल से अलविदा नहीं किया है, उन्होंने कप्तानी से अलविदा कर दिया है और अगला कप्तान कोई और होने जा रहा है। मुझे उम्मीद है आप जानते होंगे कि अगला कप्तान कौन है, कौन बनने जा रहा है। जी हाँ, स्मृति की बात हम कर रहे हैं, वो बनेंगी वो लीडरशिप उनमें है और सारे इस बात से खुश हैं कि वो कप्तानी का जो ओहदा है उनके ओर गया है और इसको लेके भी काफ़ी जोश है। लेकिन ये क्या है ना कि ये हमारी जो घड़ी है ये बहुत ही नाजुक मोड़ पर आके मुझे याद दिला देती है कि अब तुम्हारा जाने का वक्त हो गया। बहुत ज़्यादा मेरे पास वक्त नहीं है, मैं और भी आपको बहुत कुछ बताना चाहूँगी, इसलिए चलिए थोड़ी सी और वक्त संगीत के साथ डालें, संगीत को दें। तो अगला गीत फिल्म धुरंधर से इश्क जलाकर, ये गीत सुनिए और कुछ और बातों का साथ रहेगा हमारा और आपका साथ ओनली ऑन 107।

0: आज के दिन।
1: वक्त चला है बताने का आज के दिन के इतिहास के बारे में, यानी कि पन्ना पलटना है हमें इतिहास का और आज के दिन क्या हुआ था। आपको बताएं, आज ही के दिन सन 1586 में, यानी कि 1586 में मुगल सेना कश्मीर में घुसी और अकबर के टाइम पर कश्मीर मुगल एम्पायर में आने के बाद वहां पहुंची और एक बहुत बड़ा टूरिज्म को, हम कह सकते हैं मॉडर्न वर्ल्ड में टूरिज्म को, भ्रमण के लिए वो जगह चुना गया। सन 1950 में मदर टेरेसा ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी का स्थापना करी कोलकाता में, सिर्फ और सिर्फ 13 लोगों को लेकर, और वहीं आज इस संस्था से लाखों लोग जुड़े हुए हैं। सन 1952 में आज ही के दिन चंडीगढ़ को पंजाब का कैपिटल बनाया गया, यानी कि राजधानी बनाई गई। सन 1952 में रैपिड एक्शन फोर्स की स्थापना हुई और आज ही के दिन, जी हाँ दोस्तों, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड भी मिला एक विशेष व्यक्ति को। साथ ही आज ही के दिन 1868 में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी खुला, यानी कि उसकी स्थापना हुई अमेरिका में। आज ही के दिन चांद का पिछला हिस्सा पहली बार फोटो में आया रशिया के लूना 3 के जरिए, और ये हुआ सन 1959 में। साथ ही आपको बताएं कि आज पूरे विश्व में वर्ल्ड कॉटन डे, यानी कि विश्व कपास दिवस मनाया जा रहा है। तो ये थी आज के दिन की खासियत, और स्टूडियो की घड़ी मुझसे कह रही है कि बातें तो ख़त्म करने को दिल नहीं करता, क्योंकि मुझे बताने को बहुत है, आपसे सुनने को बहुत कुछ है, लेकिन वही घड़ी का इशारा है कि मुझे अब आपसे जुदा होना है, आपसे विदा लेना है। तो

एंड हियर कम्स द लास्ट ट्रैक. प्रोग्राम को वाइंड अप करते हुए थ्री इडियट्स से जुबी जुबी सिर्फ और सिर्फ आप सभी के लिए ओनली ऑन 107 FM रेनबो पर.

गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, रेनबो

जी हाँ, एंटरटेनमेंट का तड़का यानी कि 3 का तड़का, 15:04 यानी कि 3:04 यानी वक्त है उस प्रोग्राम का जिसे हम 3 का तड़का कहते हैं। और 3 का तड़का में आज आपके साथ है आपका ये रेडियो वाला, जी हाँ मैं अमर। इसमें आज हमने लिया है सुपरहिट जोड़ी शाहरुख खान के लिए प्लेबैक करने वाले सिंगर अभिजीत जी को। आपको पता ही होगा कि अभिजीत जी ने शाहरुख खान के लिए कई सारे ऐसे गीत गाए जो कि काफी सुपर डुपर हिट रहे। तो आज चर्चा हमारी इसी के ऊपर, तो चलिए सुनते रहिए, साथ रहिए।

बस इतना सा ख्वाब तो सबको है दोस्तों जी हाँ, किसी के ख्वाब पूरे होते हैं, किसी के ख्वाब पूरे नहीं होते हैं, ये वो अलग बात है, बट हाँ ख्वाब सबको ही देखता है। इस फिल्म के बारे में थोड़ी सी बातें करता हूँ आपको कि ये फिल्म 18 जुलाई सन 1997 को रिलीज हुई थी और इसका निर्देशन अजीज मिर्जा ने किया था। शाहरुख खान, जूही चावला और आदित्य पंचोली मुख्य भूमिकाओं में थे इस फिल्म में। और पता है आपको कि फिल्म की कहानी 1993 की हॉलीवुड फिल्म फॉर लव ऑफ मनी से प्रेरित थी। जी हाँ, इंस्पायर्ड थे। फिल्म का संगीत जतिन ललित ने दिया था और गीत जावेद अख्तर ने लिखे थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तड़का तो इसे ही कहते हैं ना। फिल्म के 6 गानों में से 4 गाने अभिजीत ने गाए थे दोस्तों। चांद तारे, जाता है तू कहाँ, मैं कोई ऐसा गीत गाऊँ, और सुनिए तो मैं कोई ऐसा गीत गाऊँ के लिए अभिजीत को सन 1998 में फिल्म फेयर बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड से भी नवाजा गया। ये उनके करियर का पहला फिल्म फेयर अवार्ड था। एक बहुत खूबसूरत संजोग भी सोचिए या फिर जो भी हो, चांद तारे में शाहरुख जिस जगह दिखाई देते हैं वही जगह बाद में उनका घर मन्नत बना। उस समय वो इमारत उनकी संपत्ति नहीं थी। और अभिजीत साहब और शाहरुख की प्लेबैक वाली खास बात तो यह है कि यहां एक बात मैं भी कहना चाहूंगा कि पुराने इंटरव्यू हुआ हाल में सामने आया अभिजीत के इंटरव्यू खोजे, लेकिन यस बॉस की रिकॉर्डिंग में अभिजीत और शाहरुख के बीच ये खास घटना हुई थी, जैसी कोई घटना नहीं मिली जिसे मैं बता सकूं। लेकिन अभिजीत ने बाद में कहा था कि एक बहुत ही दिलचस्प बात कहा था कि यस बॉस के बाद उन्हें इतनी सफलता और शाहरुख के लिए गाने की इतनी पहचान मिली कि वे खुद को शाहरुख की आवाज़ मानने लगे और दूसरे कलाकारों के लिए गाने को लेकर बहुत सेलेक्टिव हो गए थे।

अगर आप परमिशन दें, अगर आप अनुमति दें तो मैं कुछ कहूँ? बिल्कुल, मैं कहना यह चाहूंगा कि चांद तारे की कहानी सिर्फ यस बॉस से शुरू नहीं हुई थी दोस्तों। सबसे दिलचस्प ट्रिविया यही है, चांद तारे की धुन मूल रूप से जतिन ललित के पुराने एल्बम रिदमिक लव के एक गीत दिल कहता है से निकली थी। ललित पंडित ने खुद बताया कि उन्होंने यह कंपोजिशन 1986 में बनाया था और बाद में यही धुन यस बॉस में चांद तारे के रूप में सामने आया, जिसे आज हम सुनते हैं। यानी जिस आवाज में हम आज शाहरुख को चांद तारे तोड़ लाऊं सुनते हैं, उसकी म्यूजिकल जर्नी करीब 11 साल पहले शुरू हो चुकी थी। अभिजीत की आवाज़ और शाहरुख का चेहरा, यह कम्बिनेशन बहुत सोच समझ कर बैठा। यस बॉस के साउंड ट्रैक में अभिजीत ने 4 गाने गाए और इसमें एक खास बात समझ आती है कि फिल्म के रोमांटिक और यूथफुल शाहरुख के लिए लगभग पूरा म्यूजिकल वोकल आइडेंटिटी अभिजीत की आवाज में बनाई गई थी।

गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं तीन का तड़का, तीन का तड़का, तीन का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर, तीन का तड़का, तीन का तड़का, तीन का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर, रेनबो पर।

0: बिल्कुल, अगर आप कहिए तो हम बार बार आएं आपके पास बिताने कुछ पल आपके साथ, और म्यूजिकल सफर हमारा रहे। आप खुश रहें, हमारे सुनने वाले खुश रहें, सारे कोई खुश रहें और गुजारें अच्छे वक्त।
1: बिल्कुल,
0: चलिए चलते चलते ये गीत आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ, अभिजीत की आवाज़ में, शाहरुख खान के लिए गाया था उन्होंने।

107 AIRFM रेनबो दिल से दिल तक। अभी तक आप सुन रहे थे प्रोग्राम तीन का तड़का, और तीन का तड़का में अब आगे की हमारी जो पेशकश है वह है NCERT से जुड़ा हमारा ये प्रोग्राम। चलिए सुनते हैं।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है पुराना तालाब डुमराव बिहार से वलीउल्लाह अंसारी और अस्मा नाज अंसारी जी ने। लिखते हैं,
2: ठोकर इसलिए नहीं लगती कि इंसान गिर जाए, ठोकर इसलिए लगती है कि इंसान उससे सबक लेकर संभल जाए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है कांडला बंदरगाह कच्छ से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल।
2: इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है साहू पारा सहसपुर से छोटकू साहू, मोहित राम साहू, लोकेश साहू, रामकिशन साहू और दुलीचंद साहू जी का। वो लिखते हैं,
1: प्रिय उद्घोषक जी मन ला जय जोहार पहुँचे, आपके उमंग एनसीईआरटी कार्यक्रम ला ध्यान लगा के सुनथन, बहुत बहुत धन्यवाद देवत हूँ।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
1: और अगला संदेश हमें मिला है ऊपर कोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अब्बान अब्बासी जी का।
2: और इसके साथ साथ ही संदेश मिला है गांव गणेश धाम परसुली जिला बालू छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊ दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी।
1: और छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू के साथ साथ शिवम साहू लिखते हैं, सादर नमस्कार,
2: मैं उमंग कार्यक्रम का नियमित श्रोता हूँ। इस कार्यक्रम से हमें मनोरंजन तो होता ही है और हमें ज्ञान और सीख व प्रेरणा भी मिलती है। और सफल प्रस्तुति के लिए उमंग परिवार और अजीत जी और विमलेश जी को हार्दिक बधाई।
1: अकोला महाराष्ट्र से डॉक्टर संतोष कायंदे, डॉक्टर अशोक इंगले, डॉक्टर संतोष वावगे और श्री संजय देशमुख लिखते हैं,
2: सीआईईटी द्वारा प्रस्तुत उमंग कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लगता है
1: जी।
2: कल उमंग कार्यक्रम में दृढ़ संकल्प की धनी अरुणिमा सिन्हा के बारे में जानकारी दी गई, जो हमें बहुत अच्छी लगी। हम लोग अकोट जिला अकोला में स्थित श्री शिवाजी महाविद्यालय में अध्यापक हैं। महाविद्यालय में जाने के लिए हर दिन हमें 50 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है। उमंग कार्यक्रम में दी जाने वाली रोचक जानकारी से हमारी हर दिन की यात्रा बहुत सुखद और आनंददायी बन जाती है।
1: आपने आगे लिखा है, इस कार्यक्रम से न केवल हमारी यात्रा सुखद बनती है बल्कि उससे हमारा अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया भी बहुत प्रभावी बन जाती है। उमंग कार्यक्रम हमारी दिनचर्या का अभिन्न अंग बन गया है। प्रोफेसर राजेंद्र पाल जी, अजीत जी, विमलेश जी और पूरी उमंग टीम को हमारा प्यार भरा नमस्कार।
2: जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं प्रतिष्ठित पुरस्कारों की।
1: श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी विश्व प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार की
2: जी।
1: आज हम आपको एशिया के एक ऐसे प्रतिष्ठित पुरस्कार की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे अक्सर एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। तो विमलेश जी, जरा श्रोताओं को ये तो बताइए कि आज हम किस पुरस्कार की बात करेंगे।
2: अजीत जी, आज हम बात करेंगे रमन मैग्सेसे पुरस्कार की।
1: बिल्कुल सही,
2: लेकिन इस पुरस्कार के पीछे की कहानी जानने के लिए हमें चलना होगा फिलीपींस के इतिहास में। तो आइए श्रोताओं, शुरू करते हैं
1: मैग्सेसे पुरस्कार की कहानी। तो विमलेश जी, पहला प्रश्न तो ये है कि इस पुरस्कार का नाम मैग्सेसे पुरस्कार क्यों पड़ा?
2: अजीत जी, सचमुच ये जानना बहुत जरूरी है। दरअसल रेमोन मैग्सेसे फिलीपींस के राष्ट्रपति थे। उनका जन्म 31 अगस्त 1907 को फिलीपींस में हुआ था। वे अपने सरल जीवन, जनता से जुड़ाव और सार्वजनिक सेवा के लिए जाने जाते थे और जनता में बहुत लोकप्रिय थे
1: जी। राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने शासन में ईमानदारी और आम लोगों की समस्याओं पर बहुत ध्यान दिया। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन प्रश्न ये भी है कि उनके नाम पर पुरस्कार शुरू करने की जरूरत क्यों पड़ी, ये तो हमारे श्रोताओं को बताएं।
2: बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है आपने। इसके पीछे एक दुखद घटना है। 17 मार्च 1957 को एक विमान दुर्घटना में राष्ट्रपति रेमोन मैग्सेसे की मृत्यु हो गई। बहुत कम उम्र में उनका जीवन समाप्त हो गया।
1: और श्रोताओं, उनकी स्मृति को जीवित रखने और एशिया में ऐसे लोगों को सम्मानित करने के उद्देश्य से 1957 में रेमोन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना की गई। पहला पुरस्कार समारोह 1958 में हुआ, लेकिन विमलेश जी, श्रोताओं को हम ये भी बताना चाहेंगे जरूर कि ये पुरस्कार किन लोगों को दिया जाता है।
2: अजीत जी, ये पुरस्कार ऐसे व्यक्तियों या संस्थाओं को दिया जाता है जिन्होंने एशिया में समाज और मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए उल्लेखनीय कार्य किया हो, जैसे
1: सामाजिक सेवा, सामुदायिक नेतृत्व, पत्रकारिता, साहित्य, कला, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में असाधारण योगदान देने वाले लोगों को भी ये सम्मान मिल सकता है
2: जी।
1: भारत के कई उल्लेखनीय व्यक्तियों और संस्थाओं को भी रेमोन मैग्सेसे पुरस्कार मिल चुका है।
2: मुझे लगता है इस पुरस्कार की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये हमें बताता है समाज में बदलाव केवल बड़े बड़े नामी लोगों से नहीं आता।
1: जी विमलेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा। किसी गांव में काम करने वाला कोई सामाजिक कार्यकर्ता, किसी गरीब बच्चे को पढ़ाने वाला शिक्षक, कोई सकारात्मक पत्रकार या सामुदायिक हित के लिए लगातार काम करने वाला व्यक्ति भी समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है।
2: यानी रेमोन मैग्सेसे पुरस्कार की मूल भावना है निस्वार्थ सेवा और समाज के प्रति जिम्मेदारी।
1: जी बिल्कुल, ये पुरस्कार हमें याद दिलाता है कि किसी भी काम की महानता केवल इस बात से तय नहीं होती कि उसे कितने लोग देख रहे हैं, बल्कि इस बात से होती है कि उससे कितने लोगों के जीवनों में सकारात्मक परिवर्तन आया।
2: तो अजीत जी, अगर हम अपने जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो क्या हमें किसी बड़े अवसर का इंतजार करना चाहिए?
1: बिल्कुल नहीं विमलेश जी, बिल्कुल नहीं। शुरुआत अपने आसपास से ही की जा सकती है।
2: एक बच्चा पढ़ाना,
1: दूसरी बात किसी जरूरतमंद की मदद करना,
2: पर्यावरण की रक्षा करना,
1: ईमानदारी से अपना काम करना
2: और समाज में सकारात्मक सोच फैलाना,
1: ये सभी छोटे छोटे कदम मिलकर बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं।
2: जी तो श्रोताओ, आज की कहानी हमें एक सुंदर संदेश देती है कि
1: सम्मान पाने के लिए महान काम मत कीजिए, महान काम इसलिए कीजिए क्योंकि उससे किसी का जीवन बेहतर हो सकता है।
2: और शायद यही रेमोन मैग्सेसे पुरस्कार की सबसे बड़ी प्रेरणा है। तो श्रोताओ, ये थी आज की जानकारी एशिया के नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाले रेमोन मैग्सेसे पुरस्कार की। अब सुनिए आज का प्रश्न।
1: तो हमारा आज का प्रश्न है कि मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा और किन की स्मृति में दिया जाता है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा और किन की स्मृति में दिया जाता है।
1: आप इस नंबर पर या हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर हमारे प्रश्न का उत्तर या अपनी प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं।
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप सीआईटी एनसीईआरटी के बारे में ताजा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकें डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए एनसीईआरटी बुक्स पीडीएफ। वेबसाइट पर उपलब्ध विकल्पों पर जाकर आप इन पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
1: और हाँ, यदि आप एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो एनसीईआरटी यूट्यूब ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।
2: जी,
1: इस चैनल पर आप उन कार्यक्रमों को भी सुन सकते हैं जो उमंग कार्यक्रम में प्रसारित होते हैं। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम।

0: कार्यक्रम है अपना अपना काम।
1: एनसीईआरटी की तीसरी कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में संदेश दिया गया है कि हम सबका अपने परिवार और समाज में एक विशेष उत्तरदायित्व और कार्य है, उसे हमें पूरे समर्पण के साथ निभाते हुए कार्य करना चाहिए।

0: यम का राग सुनाती चींटी। सचमुच कैसी कलाकार है, घर को खूब सजाती चींटी। ये हो गया मेरा स्कूल का काम।
1: ओहो, मैं तो थक गई।
2: वो सोचने लगी,
1: इतना सारा लिखने पढ़ने का काम, स्कूल जाओ तो वहाँ पढ़ो, घर आओ तो फिर पढ़ो, कितना अच्छा होता अगर मुझे पढ़ना ना पड़ता।
2: पुस्तक रख सिमरन चारों ओर देखने लगी। उसने देखा कि मधुमक्खियां आनंद पूर्वक एक फूल से दूसरे फूल तक उड़ रही थीं।
1: मैं भी मधुमक्खी बनना चाहती हूँ।
2: भिन्न भिन्न करती मधुमक्खियां रुक गईं। वे अचंभित होकर बोली,
3: तुम तो इतनी सुखी हो, तुम क्यों हमारे जैसा नन्हा कीड़ा बनना चाहती हो?
1: मुझे क्या सुख है, इतना तो पढ़ना पड़ता है। मैं तो तुम्हारी तरह डाल डाल फूल फूल उड़ना चाहती हूँ।
3: इधर से उधर उड़ना हमारा काम है। सारे दिन उड़ उड़ कर रस इकट्ठा करते करते हमारे पंख थक जाते हैं। और
2: सिमरन ने कान बंद कर लिए।
1: सारे दिन पंख फैलाकर उड़ना पड़े तो मैं बहुत थक जाऊंगी।
2: फिर उसने ऊपर देखा, फलों से लदा पेड़।
1: हाँ, अगर मैं पेड़ होती तो अच्छा था। आराम से एक जगह खड़े खड़े सब कुछ मिल जाता।
2: पेड़ हंसने लगा।
4: मैं समझ गया, तुम सोचती हो कि मैं आराम से खड़ा रहता हूं। बस सुनो, मेरे शरीर का तो हर अंग दिन रात काम करता है। जड़ें मिट्टी से पानी खींचती हैं, पत्ते दिन भर खाना बनाते हैं, और इतने परिश्रम के पश्चात जो फल उगते हैं वो भी हम तुम्हें दे देते हैं।
2: सिमरन ने आंखें झुका ली।
1: सच, ये पेड़ तो बहुत परिश्रम करते हैं, फल तो हम ही खा लेते हैं। लेकिन इस चिड़ियों की मौज है।
2: सिमरन ने चिड़ियों को दाना खाते देखकर कहा,
1: हाँ, मैं भी चिड़िया बन जाती तो ठीक था।
5: नाना, ये क्या सोच रही हो? एक एक दाना ढूंढते ढूंढते सारे दिन उड़ती हूँ मैं। घोंसला बनाने के लिए भी बहुत परिश्रम करना पड़ता है। और तो और,
1: बस बस, मैं समझ गई।
2: वो सोचने लगी,
1: परिश्रम से ही सब जीते हैं। मुझे भी परिश्रम करना चाहिए और मन लगाकर पढ़ना चाहिए।
2: उसने अपनी पुस्तकें उठाई और उत्साह से स्कूल का काम करने बैठ गई।
0: सचमुच कैसी कलाकार है, घर को खूब सजाती चींटी।
6: तो बच्चों, सुना आपने? मधुमक्खी, चिड़िया, पेड़, चींटी सभी अपना अपना काम करते हैं। जरा सोचिए कि हमारा अपना काम पढ़ाई के अलावा और भला क्या क्या हो सकता है? अपना काम हो सकता है जैसे सुबह उठकर अपना बिस्तर ठीक

0: करना, स्कूल से आकर बस्ता सही जगह पर रखना, और हाँ, माता पिता की जहां तक हो सके मदद करना, है ना ये हमारा अपना काम। तो आइए, जब सब करते हैं अपना अपना काम, तो क्यों ना हम सब भी करें अपना अपना काम।
1: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम

0: और आइए अब सुनते हैं भारत के प्रथम इंजीनियर सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया के जीवन और उपलब्धियों पर आधारित ये विशेष कार्यक्रम।
1: भारत ने सभी क्षेत्रों में एक से एक विलक्षण प्रतिभाओं को जन्म दिया है। इन प्रतिभाओं का अमूल्य योगदान पूरी मानवता के लिए वरदान सिद्ध हुआ है।
2: ऐसे ही एक महान व्यक्तित्व थे डॉक्टर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया। उन्हें भारतीय इंजीनियरिंग का जनक कहा जाता है। वो एक अद्भुत प्रतिभा वाले विलक्षण अभियंता और युग दृष्टा थे। उनका जन्म कर्नाटक राज्य के कोलार जिले के चिक्का बल्लापुर कस्बे में 15 सितंबर 1860 को हुआ था।
1: बहुत कम लोग जानते हैं कि भारत में अभियंता दिवस या इंजीनियर्स डे उन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 15 सितंबर को मनाया जाता है। उनके पिता का नाम श्रीनिवास शास्त्री तथा माता का नाम वेंकचम्मा था। उनके पूर्वज आंध्र प्रदेश के मोक्ष गुंडम से यहाँ आकर बस गए थे, इसलिए मोक्ष गुंडम उनके पारिवारिक नाम में जोड़ा जाने लगा।
2: जब बालक विश्वेश्वरैया मात्र 12 साल के थे, तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई। उनकी प्रारंभिक शिक्षा उनके जन्म स्थान पर स्थित एक प्राइमरी स्कूल में हुई। पिता की मृत्यु के बाद आर्थिक संकट ऐसा रहा कि उन्हें बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपनी पढ़ाई का खर्च उठाना पड़ता था।
1: उन्होंने कठोर परिश्रम किया और परिस्थितियों से संघर्ष किया और आखिर आ ही गया वर्ष 1881, जब उन्होंने पूरे मैसूर राज्य में विज्ञान स्नातक की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया।
2: बहुत अच्छा काम। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज की सभा श्री मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया के सम्मान में बुलाई गई है, जिन्होंने पूरे मैसूर राज्य में प्रथम श्रेणी में सबसे अधिक अंक लाकर विज्ञान में स्नातक की परीक्षा पास की है। उनसे निवेदन है कि मंच पर आकर प्रशस्ति पत्र ग्रहण करें। भाई वाह, कमाल कर दिया। साथियों, इतना ही नहीं, आज ही विश्वविद्यालय में मैसूर राज्य के दीवान का संदेश आया है कि श्री मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया जी की आगे की पढ़ाई और बाकी पूरा खर्च मैसूर सरकार ही वहन करेगी।
1: पूना के साइंस कॉलेज से उन्होंने सन 1883 में सिविल इंजीनियरिंग की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया और महाराष्ट्र सरकार के नासिक लोक निर्माण विभाग में सहायक इंजीनियर के पद पर नियुक्त हुए। भवन निर्माण, जल और नगर प्रबंधन जैसे कार्यों में उनका सानी नहीं था।
2: उन दिनों भारत आजाद नहीं हुआ था। हुआ ये कि शक्कर में पानी की भारी समस्या खड़ी हो गई। बता दें कि शक्कर सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ सिंध प्रांत का एक नगर है। इसे सुकूर भी कहते हैं। समस्या के निदान के लिए विश्वेश्वरैया जी को विशेष सलाहकार के रूप में ब्रिटिश सरकार के मुख्य अभियंता द्वारा शक्कर बुलाया गया।
3: फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि आज की खास बैठक शक्कर नगर पालिका में पानी की समस्या पर बात करने के लिए बुलाई गई है। हमें इसका समाधान खोजना है।
4: जी सर, इन दिनों अखबारों में भी इसके बारे में बहुत छप रहा है और जनता बहुत परेशान है सर।
3: ये एक सीरियस बात है। हमें खुशी है कि हमारी खास गुजारिश पर आज हमारे बीच मिस्टर मोक्ष गुंडम मौजूद हैं। आपने बहुत सी जगहों पर बहुत उम्दा काम किया है। मिस्टर मोक्ष गुंडम, हम आपके विचार जानना चाहते हैं।
5: धन्यवाद सर। हमें नदी के आसपास हर 500 मीटर की दूरी पर गहरे गड्ढे खोदने होंगे ताकि बाढ़ के समय सिंधु नदी का पानी इन गड्ढों में भर जाए और वर्षा के जल का भंडारण हो सके। हमने बहुत से स्थानों पर इस तरीके को अपनाया है सर।
4: आप कहना चाहते हैं कि ऐसा करने से बाढ़ का पानी गड्ढों में भर जाएगा? इससे बाढ़ का पानी शहर में भी नहीं जाएगा और पानी जमा भी हो जाएगा, है ना?
5: जी सर, और इसके अलावा हमें शहर की सभी ऊंची जगहों पर बड़ी बड़ी टंकियां बनानी होंगी।
4: क्यों?
5: ताकि वहां भी वर्षा का जल जमा किया जा सके।
4: हो,
5: और हाँ सर, ऊंटों द्वारा टंकियों तक जल पहुंचाया जा सकता है।
3: यू मीन वॉटर हार्वेस्टिंग। बहुत अच्छा विचार है आपका। मैं आपके डिपार्टमेंट को आज ही लेटर लिखता हूँ कि आपका तबादला कुछ समय के लिए शक्कर में कर दिया जाए।
5: थैंक यू सर, मुझे भी आपके साथ काम करके बहुत खुशी होगी सर।
3: ओके ओके ओके, वेलकम वेलकम।
5: थैंक यू।
2: साथियों, विश्वेश्वरैया के इस सुझाव का परिणाम बहुत ही प्रभावी रहा। बाढ़ की समस्या से भी छुटकारा मिला और सक्कर जैसे शुष्क प्रदेश में जल की समस्या बहुत हद तक दूर हो गई। ये परियोजना देश के बहुत से जल संकट का सामना करने वाले क्षेत्रों के लिए उदाहरण बन गई। इस समय उनकी उम्र मात्र 32 वर्ष थी। लोक निर्माण विभाग में रहकर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया जी ने कोल्हापुर, बेलगाम, धारवाड़, बीजापुर, अहमदाबाद और पूना समेत कई शहरों में जल आपूर्ति परियोजनाओं पर खूब काम किया था।
1: अब तक उनकी ख्याति पूरे देश में फैल गई थी। उन्हें मैसूर राज्य का मुख्य अभियंता नियुक्त कर दिया गया और साथ साथ दक्षिण भारत के कर्नाटक संभाग का रेलवे सचिव भी। एक बार उनके साथ बड़ी रोचक घटना हुई। वो ट्रेन से लोक निर्माण विभाग के किसी सम्मेलन में मुख्य वक्ता के रूप में भाग लेने जा रहे थे। ट्रेन में कई अंग्रेज भी थे।
2: सभी अपनी अपनी बातों में व्यस्त थे और ट्रेन तेज गति से चल रही थी। अचानक मोक्ष गुंडम उठे और ट्रेन की जंजीर खींच दी। लोगों को बड़ा गुस्सा आया। उनका अचानक उठना और तेजी से जाकर ट्रेन का जंजीर खींचना किसी की समझ में नहीं आया।
6: किसने खींची चेन?
4: सर, हमने नहीं किया। हाँ, हमने नहीं किया, इन्होंने किया है। हम तो मना कर रहे थे सर।
5: जी सर, मैंने ही चेन खींची है। सर, मुझे लगा कि आगे की पटरियां उखड़ी हुई हैं।
6: व्हाट? क्या मजाक है? ये आप कैसे कह सकते हैं?
5: श्रीमान, यदि विश्वास नहीं है तो चलकर स्वयं देख लीजिए।
6: आइए आइए, देखते हैं।
5: आइए, हम भी चलते हैं।
6: लेकिन मिस्टर, कान खोलकर सुन लीजिए, अगर बात आपकी गलत निकली ना तो आपको सजा हो सकती है। आइए।
5: ठीक है सर, मुझे मंजूर है।
2: और मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया की बात सच निकली।

0: कुछ दूरी पर उन्हें पटरियां उखड़ी हुई दिखाई दी।
1: आइए सर, आइए देख लीजिए।
2: अभी तक तो यहाँ भी ठीक ही है। आइए आगे देखते हैं। अरे एक मिनट, यहाँ पटरियां तो सच में उखड़ी हुई हैं। ये देखिए, यहाँ पटरियां उखड़ी हुई हैं। अब मिस्टर, आपको कैसे पता चला?
1: सर देखिए, जब सभी अपनी अपनी बातों में व्यस्त थे तो मुझे ऐसा लगा कि ट्रेन की गति में अचानक परिवर्तन आ गया है और पटरियों की आवाज भी बदल गई है। सामान्य स्थिति में ऐसी आवाज प्राय सुनाई नहीं देती है, तभी मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है।
2: थैंक यू वेरी मच सर, आपने आज बहुत से यात्रियों की जान बचा ली।
3: We are so thankful to you. It's amazing. May I know your name, please?
1: I am Dr. Moksh Gundam Vishweshwaraiah.
3: Oh, the engineer in chief of Mysore State.
4: Aur railway sachiv bhi.
2: Namaskar sir.
5: See.
1: Ji, ji sir. Main wahi hoon.
3: Namaskar sir. Namaskar. We were actually going to attend your meeting only. It's actually our privilege to meet you personally. Thank you very much, sir. Thank you.
1: धन्यवाद।
0: तो ऐसे थे डॉक्टर विश्वेश्वरैया। बांध बनाने की प्रक्रिया में स्वचालित जल द्वारों का प्रयोग उनका अद्भुत नवाचार था। इस तकनीक को डॉक्टर विश्वेश्वरैया के नाम पर पेटेंट किया गया। आज भी ये प्रणाली पूरे विश्व में प्रयोग में लाई जा रही है।
6: कृष्णराज सागर बांध के निर्माण के कारण मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया का नाम पूरे विश्व में सबसे अधिक चर्चा में रहा। मैसूर राज्य में उनके योगदान को देखते हुए मैसूर के महाराजा ने उन्हें सन 1912 में राज्य का दीवान यानी मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया।
0: लोक निर्माण कार्य में उनके अतुल्य योगदान को देखते हुए उन्हें अनेकानेक सम्मान और पुरस्कारों से नवाजा गया। सन 1904 में उन्हें 50 साल तक लंदन इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स की मानद सदस्यता दी गई। 1921 में वो कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर ऑफ साइंस से सम्मानित किए गए।
6: सन 1955 में कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। जब सर एम विश्वेश्वरैया 100 साल के हुए तब भारत सरकार ने उनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया। 101 साल की उम्र में 14 अप्रैल 1965 को विश्वेश्वरैया का निधन बेंगलोर आज के बंगलुरु में हो गया।
0: सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया की दूरदर्शिता के कारण मैसूर में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाया गया और लड़कियों की शिक्षा के लिए पहल की गई। समाज के संपूर्ण विकास के उनके कार्यों के कारण ही उन्हें कर्नाटक का भगीरथ भी कहा जाता है। सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया को उनके अतुल्य योगदान के लिए राष्ट्र और विश्व का आभार।
7: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम।
8: जी मैं रमेश, पिछले 20 साल से ट्रक चला रहा। रात को सफर लंबा होता है और रास्ते अंधेरे। उस रात मैंने गाड़ी एक ढाबे के पास खड़ी की थी और रिफ्लेक्टर के ऊपर मिट्टी जमी हुई थी, तो मैंने सोचा कल सुबह साफ कर दूंगा। मुझे बात छोटी सी लगी, सिर्फ एक मिनट लगता है साफ करने में। उस रात किसी की जान भी तो जा सकती थी।

0: रात में सड़क किनारे खड़े वाहन पर साफ और सही रिफ्लेक्टर होना आवश्यक है ताकि वो दूर से स्पष्ट रूप से दिखाई दे।
1: तो श्रोताओ, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को
2: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, चेतना,
1: कुसुमलता,
2: वीरेंद्र
1: और हमारी आज की विशेषज्ञ
2: सहायक आचार्य दीपमाला जी के साथ कल तक के लिए विमलेश को आज्ञा दीजिए।

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।

107 और आपका साथ वर्षों का, यानी हम साथ साथ हैं छायालोक में, साथ आपके, मैं आपका रेडियो वाला, मैं अमर। और छायालोक में आज हम बातें करेंगे कुछ फेमस ड्यूट्स की। जी हाँ, आज के छायालोक में हम बातें करेंगे, सुनेंगे कुछ नगमे अभिजीत के साथ, श्रेया घोषाल, कविता कृष्णमूर्ति और अलका याग्निक के गाए कुछ तराने।

प्रोग्राम के पहले गीत को आपने सुना था अभिजीत के साथ श्रेया घोषाल की आवाज में, फिल्म जाने होगा क्या। जी हाँ, समीर जलिस रशीद के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया था निखिल बिनय और साजिद वाजिद ने। और अगला गीत जो अभी आप सुनने जा रहे हैं वो है अभिजीत और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में।

जी हाँ, फिल्म डुप्लीकेट के इस गीत को आपने सुना अभिजीत और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में। यह धर्मा प्रोडक्शंस के साथ शाहरुख की पहली फिल्म थी दोस्तों। फिल्म के निर्माता यश जौहर थे और इसके बाद शाहरुख और धर्मा प्रोडक्शन की जोड़ी ने कई बड़ी फिल्में दी। इससे पहले इंग्लिश बाबू देसी मेम में वे ट्रिपल रोल कर चुके थे और डुप्लीकेट में उन्होंने पहली बार डबल रोल किया था, जिसमें एक किरदार मासूम सैफ था और दूसरा खूंखार गैंगस्टर। बिल्कुल रेलवे स्टेशन वाले दृश्य में काजोल नजर आती है। खास बात यह है कि उन्होंने यह कैमियो शाहरुख के लिए किया था। बिल्कुल जी हाँ, सोनाली बेंद्रे भी थी इस फिल्म में और सोनाली बेंद्रे का जो किरदार था ना सुनने वालों, वो पहले किसी और अभिनेत्री को ऑफर हुआ था। लिली की भूमिका के लिए राम्या कृष्णन का नाम सामने आया था, लेकिन बाद में ये रोल सोनाली बेंद्रे ने निभाया। जी हाँ, और जूही चावला की माँ के निधन से शूटिंग रुक गई थी दोस्तों। जी हाँ, फिल्म के शूटिंग के दौरान जूही चावला की माँ का निधन हो गया था। इसके कारण प्राग में होने वाले शूटिंग रद्द कर दी गई थी। फिल्म को आर्थिक नुकसान हुआ और रिपोर्टों के अनुसार शाहरुख ने अपनी फीस भी कम कर दी थी। फिल्म से जुड़े कई किस्से ऐसे रहते हैं सुनने वालों, जो हमें पता भी नहीं रहता, बाद में पता चलता है।

ये जो तेरी पायलों की छन छन है, फिल्म मासूम के इस गीत को अभी अभी आपने सुना साधना सरगम और अभिजीत की आवाजों में। जी हाँ दोस्तों, ये जो तेरी पायलों की छन छन है से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें हैं। यह अभिजीत साधना सरगम का डुएट था और गाना लगभग 5 मिनट 49 सेकंड का था और 1996 के मूल साउंड ट्रैक में शामिल था। गाने के संगीतकार ही इसके गीतकार भी थे, यानी आनंद राज आनंद ने इस गाने का संगीत देने के साथ साथ इसके बोल भी लिखे थे। यह उस दौर की अभिजीत की खास पहचान वाली आवाज थी, हल्की शरारत, रोमांस और थोड़ा प्लेफुल अंदाज। गाने के बोल भी उसी मूड में लिखे गए थे।

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक।

90s की फिल्मों की बात हो रही है तो कुछ उस वक्त की कुछ और फिल्मों के बारे में कुछ बातें कर ले। 1993 की बाजीगर में शाहरुख ने ऐसा किरदार निभाया था दोस्तों जो उस समय के पारंपरिक हीरो से बिल्कुल अलग था। खास बात यह थी कि हीरो हीरोइन के किरदार को मार देता है। उस दौर में यह बहुत बहुत बड़ा जोखिम था। इस फिल्म ने शाहरुख के एंटी हीरो इमेज को स्थापित करने में बड़ी भूमिका निभाई। जी हाँ, बात करें अगर DDLJ की 1995 की फिल्म DDLJ यानी कि दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे ने NRI रोमांस और भारतीय पारिवारिक मूल्यों को जिस तरह जोड़ा वो 90s की फिल्मों के लिए एक नया टेम्पलेट बन गया। फिल्म की ट्रेन वाला क्लाइमेक्स सीन याद है आपको, आज भी हिंदी सिनेमा के सबसे पहचान वाले दृश्यों में से एक है। और अगर हम बात करें 94 की तो एक फिल्म थी, जी हाँ,

ये फंक्शन शादी और रस्मों को ही एंटरटेनमेंट का हिस्सा बना दिया। और सबसे खूबसूरत और मजेदार बात तो ये थी कि टफी नाम का कुत्ता उस फिल्म में इतना इतना इतना लोकप्रिय हुआ कि बहुत से दर्शकों ने अपने कुत्ते का नाम टफी रखना शुरू कर दिया।

अब तक था आपके साथ आपका रेडियो वाला मैं अमर। उम्मीद है अब तक के सफर को आपने एंजॉय किया होगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, परिवार के साथ वक्त बिताइए और दुआ में उठे अगर हाथ तो एक छोटी सी दुआ मेरे लिए भी कर लीजिएगा। दूसरे भाग में शर्मिष्ठा रहेगी आपके साथ, सुनते रहिए।

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।

8:16 है स्टूडियो घड़ी का समय 107 एफएम रेनबो पर। आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है छायालोक, और आज के इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं आपके रेडी दोस्त शर्मिष्ठा के संग 107 एफएम रेनबो के अलावा न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी हमारे ये प्रसारण इस वक्त आप सुन पा रहे हैं। और शर्मिष्ठा करती है छायालोक के सेकेंड हाफ में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत। बुधवार की शाम है तो छायालोक के अंतर्गत हम लेकर आते हैं आपके लिए हम साथ साथ, जिसमें बातें होती हैं बॉलीवुड से जुड़ी जानी मानी जोड़ियों को लेकर। और सेकंड हाफ में भी हम बात करेंगे एक और खूबसूरत जानी मानी जोड़ी को लेकर। और चलिए इस वक्त बात कर लेते हैं किंग खान के साथ अनगिनत खूबसूरत अभिनेत्रियों की ऑन स्क्रीन जोड़ी आखिर कैसी रही, कितनी कमाल की रही, किस जोड़ी ने दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई, ये सारी बातें होंगी इस सेगमेंट में। तो जुड़े रहिएगा इस सेगमेंट के साथ छायालोक के अंतर्गत हम साथ साथ सुन रहे हैं आपके रेडियो दोस्त शर्मिष्ठा के संग। और बात हो रही है आज के इस सेगमेंट में शाहरुख खान के साथ अनगिनत खूबसूरत अभिनेत्रियों की ऑन स्क्रीन जोड़ी को लेकर। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि किंग खान ने अनगिनत फिल्मों में अभिनय करके दर्शकों के दिलों में एक बहुत बड़ी जगह बना ली है, और हम ये भी जानते हैं कि अनगिनत फिल्मों में अनगिनत खूबसूरत अभिनेत्रियों के साथ ऑन स्क्रीन जोड़ी शाहरुख खान के साथ खूब रची बसी। और लोगों ने खास किसी एक जोड़ी की बात मैं क्या ही करूं, बल्कि शाहरुख खान के साथ बेहतरीन अभिनेत्रियों की जोड़ी ने जो कमाल किए हैं उसके बारे में तो क्या ही कहने हैं ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेगमेंट की, और किंग खान के साथ आखिर किन किन अभिनेत्रियों की जोड़ी टॉप हिट रही बातें होंगी उसी को लेकर। शाहरुख खान ने कई शानदार बॉलीवुड अभिनेत्रियों के साथ सिल्वर स्क्रीन साझा की है, और सिर्फ इतना ही नहीं उनकी ऑन स्क्रीन जोड़ियां भी बेहद ही सफल रही है। तो सबसे पहले जी हाँ, किंग खान के साथ किसी अभिनेत्री की जब बात आती है तो सबसे पहले बात आती है शाहरुख खान के साथ काजोल की जोड़ी। जी हाँ, शाहरुख काजोल की जोड़ी को भारतीय सिनेमा की सबसे बेहतरीन और जादुई जोड़ियों में से एक माना जाता है। दोनों ने एक साथ कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं, और प्रमुख फिल्मों की अगर बात करें तो बासीगर के अलावा करण अर्जुन, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है के अलावा कभी खुशी कभी गम, माय नेम इज खान और आखिर में दिलवाले जैसे फिल्मों में इस जोड़ी ने साथ काम करके लोगों के दिलों में एक खास और छोटी मोटी नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी जगह इस जोड़ी ने बना ली है। और ये जो दर्शक है ये आगे भी आशा करते हैं कि इस जोड़ी को एक साथ हम फिर से बड़े पर्दे पर देख पाएं। तो चलिए ये सिलसिला जारी है जिसका नाम है छायालोक के साथ हम साथ साथ, और आज के इस सेगमेंट में बात हो रही है किंग खान के साथ अनगिनत खूबसूरत अभिनेत्रियों की जोड़ी। तो चलिए सुनवाऊँ आपको एक बहुत ही प्यारा सा तराना अरिजीत और अंतरा की आवाज़ में।

8:26 है स्टूडियो घड़ी का समय और जुड़े हुए हैं छायालोक के अंतर्गत हम साथ साथ इस कार्यक्रम के साथ, जिसमें बातें हो रही हैं किंग कान के साथ अलग अलग अभिनेत्रियों की खूबसूरत जोड़ी को लेकर। आज के इस सेगमेंट में हम कर रहे हैं बात, तो जब किंग खान के साथ अलग अलग अभिनेत्रियों की बात होती है तो फिलहाल बात कर लेते हैं दीपिका पादुकोण के साथ शाहरुख खान की इस खूबसूरत जोड़ी को। जी हाँ, शाहरुख और दीपिका इस जोड़ी ने भी कमाल का अभिनय किया है बहुत से फिल्मों में, तो चलिए इस जोड़ी को लेकर कर लेते हैं थोड़ी सी बातें। तो दीपिका ने शाहरुख की फिल्म ओम शांति ओम, जो कि रिलीज हुई थी साल 2007 में, इस फिल्म से बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत की थी। तब से लेकर अब तक ये जोड़ी बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है और प्रमुख फिल्मों की अगर बात करें तो ओम शांति ओम के अलावा चेन्नई एक्सप्रेस, हैप्पी न्यू ईयर और पठान जैसी फिल्मों में दोनों ने साथ काम किया। इसके अलावा दीपिका ने जवान और जीरो में शाहरुख के साथ कैमियो भी किया है। एक बेहतरीन तराना आप सभी सुनने वालों के लिए और उसके बाद और भी खूबसूरत अभिनेत्रियों के साथ किंग खान की जोड़ी को लेकर भी होगी बात इसी कार्यक्रम में, तो जुड़े रहिएगा इस सेगमेंट के साथ।

8:34 छायालोक के अंतर्गत हम साथ साथ इस कार्यक्रम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और चलिए फिलहाल बात कर लेते हैं शाहरुख खान के साथ रानी मुखर्जी की खूबसूरत जोड़ी को लेकर। और ये एक और सुपरहिट जोड़ी साबित हुई थी बॉलीवुड की दुनिया में और शाहरुख रानी की जोड़ी ने भी दर्शकों के दिलों में एक खास जगह बना ली थी। रानी मुखर्जी और शाहरुख ने 90 के दशक के अंत से लेकर 2000 के दशक की शुरुआत तक कई आइकॉनिक फिल्मों में साथ काम किया। प्रमुख फिल्मों की अगर बात करें तो कुछ कुछ होता है के अलावा चलते चलते वीर जारा पहेली के साथ साथ कभी अलविदा ना कहना जैसी फिल्मों में इस जोड़ी ने कमाल का अभिनय करके दर्शकों के दिलों में एक खास जगह बनाई। इसके अलावा अनुष्का के साथ शाहरुख की जोड़ी को भी लोगों ने कुछ कम पसंद नहीं किया था। अनुष्का ने शाहरुख के ऑपोजिट रब ने बना दी जोड़ी से अपना शानदार डेब्यू किया था। प्रमुख फिल्मों की अगर बात करें तो रब ने बना दी जोड़ी के अलावा जब तक है जान और जब हैरी मेट सेजल के अलावा जीरो जैसी फिल्मों में इस जोड़ी ने साथ काम किया था।

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।

8:45 है सूर्य की घड़ी का समय। 107 FM रेनबो के अलावा न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी हमारे ये प्रसारण इस वक्त आप सुन पा रहे हैं। चालू के अंतर्गत हम साथ साथ इस कार्यक्रम के अगले सेगमेंट के साथ जुड़े हुए हैं आपकी रेडियो दोस्त शर्मिशा के संग। और चलिए इस सेगमेंट में बात हो रही है किंग खान के साथ अनगिनत खूबसूरत अभिनेत्रियों की बेहतरीन जोड़ी को लेकर आज हम कर रहे हैं बात। और अन्य दिग्गज अभिनेत्रियों की अगर मैं बात करूं तो शाहरुख खान ने अपने करियर में कई अन्य सुपरस्टार्स के साथ भी यादगार फिल्में की हैं, जिनमें माधुरी दीक्षित का नाम अगर हम लें तो

साल 1997 में फिल्म आई थी दिल तो पागल है के अलावा साल 2000 में इस जोड़ी ने साथ काम किया था फिल्म देवदास में, और इस जोड़ी ने लोगों को कुछ कम पागल नहीं बनाया था। इसके अलावा प्रीति जिंटा के साथ भी शाहरुख खान की जोड़ी को लोगों ने कुछ कम पसंद नहीं किया था। जी हाँ, 1998 में फिल्म आई थी कल होना हो, जी हाँ, दिल से ये जो फिल्म है इसमें इस जोड़ी ने साथ काम किया था साल 1998 में। इसके अलावा साल 2003 में कल होना हो में इस जोड़ी को साथ देखा गया था, और इसके अलावा ठीक उसके बाद वाले साल यानी कि साल 2004 में वीर ज़ारा फिल्म में फिर एक बार इस जोड़ी ने साथ काम किया था। और इसके अलावा साल 2000 की अगर मैं बात करूं तो ऐश्वर्या राय और शाहरुख खान की जोड़ी ने लोगों को दीवाना बना दिया था फिल्म मोहब्बतें में। जी हाँ, मोहब्बतें एक ऐसी फिल्म थी जिसमें ऐश्वर्या राय के साथ शाहरुख की जोड़ी ने तो कमाल ही कर दिया था। और इसके अलावा साल 2002 में फिर एक बार इस जोड़ी को दिखाई दिया था, जी हाँ, देवदास फिल्म में। और नयनतारा की अगर हम बात करें तो साल 2023 में हाल ही में जवान फिल्म में इस जोड़ी ने भी लोगों को कुछ कम दीवाना नहीं बनाया, और फिल्मी पर्दे पर उनकी ये केमिस्ट्री आज भी दर्शकों के दिलों पर राज कर रही है। और जब शाहरुख खान के साथ अनगिनत अभिनेत्रियों की बात आती है तो करिश्मा कपूर के साथ शाहरुख की फिल्मों को भला हम कैसे भूल सकते हैं ना। इसीलिए बॉलीवुड में शाहरुख खान और करिश्मा कपूर की जोड़ी मुख्य रूप से ब्लॉकबस्टर फिल्म दिल तो पागल है, जो कि रिलीज हुई थी 1997 में, और एक्शन ड्रामा शक्ति द पावर जो कि रिलीज हुई थी साल 2002 में। इस फिल्म में करिश्मा और शाहरुख की जोड़ी को साथ हमने देखा था, और ये एक और जोड़ी थी जिसने लोगों को फिर एक बार दीवाना बनाया था।

मैं कोई ऐसा गीत गाऊं तो क्या आपको याद आ रहा है कि आखिर शाहरुख इस गाने में किसके लिए, किस अभिनेत्री के लिए ये गाना गा रहे हैं? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना, शाहरुख चुलबुली अभिनेत्री जूही चावला के लिए फिल्म यस बॉस में ये गीत गा रहे हैं। और यस बॉस का ये बहुत ही प्यारा सा गाना था, 90s के समय का यादगार तराना आप सुन रहे थे। और इसके अलावा 90s में एक और फिल्म आई थी, फिल्म परदेस। जी हाँ, आपको तो याद ही होगा। और इस फिल्म में, फिल्म परदेस में शाहरुख नज़र आए थे महिमा चौधरी के साथ। और इस तरीके से शाहरुख के साथ खूबसूरत अभिनेत्रियों की जोड़ी का जो सिलसिला है आज के इस कार्यक्रम में, फिलहाल के लिए तो यहीं पर समाप्त होता है। और फिर कभी इसी जगह इसी चैनल पर दोबारा सुपरहिट जोड़ी को लेकर बात होगी इसी कार्यक्रम के अंतर। और फिलहाल आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करने की इजाज़त दीजिए, क्योंकि स्टूडियो की घड़ी जो है वो बराबर तरीके से इशारा किए जा रही है कि आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करना होगा। लेकिन जाने से पहले 90s के समय का एक और खूबसूरत तराना कुमार शानू की आवाज़ में आप सभी सुनने वालों के लिए इस गीत को सुनते सुनते शर्मिंदा को दीजिए इजाज़त आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करने की। मिलूंगी बहुत जल्द इसी जगह इसी चैनल पर, तब तक के लिए ट्यून रहिएगा एक साथ FM रेनबो के साथ।

डियर ऑडियंस, आज हम आपको चांद पर ले जा रहे हैं। ये देखिए ये रॉकेट। इस रॉकेट से एक खूबसूरत महबूबा अपने मह

0: के साथ चांद पर उतरकर प्यार की मस्ती में डांस करेगी।
1: हाय डार्लिंग, आई वांट टू डांस विद यू, डांस डांस ऑफ लव, डांस ऑन द मून।